इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है, तो इसमें तो सिर्फ डूबना ही डूबना है भाई। इसके अंदर अगर सोचो, इसके अंदर किनारा मिलेगा, किनारा नहीं मिलेगा।

0: चले सुहा लगो ये लगवा चलो चलो
1: ना एक लगा दे एक पिलिंग को ना बेसवा दिया हां
0: चलो चलो
2: वीडियो तो ऑलरेडी बना
0: सबके सबके लेनी है वीडियो कोई आदमी ना
1: यार
0: फिर मिले ना मिले
1: ये जो फालतू बोले
0: पल है समा में आ जा तो थोड़ा बड़ा करवा ले करें हाँ हमें देखते एक पार तो हमारा
1: ये अस्थाई को बैसाखी को हो गया एक पार हमारा अस्थाई का हो गया फिर वो दौड़ बहुत भोग भोग करने पड़ेंगे हमें
0: One, two.

0: आप गजल क्यों लिखी जाती है, किस भाव से लिखी जाती है?
1: भाव से जो किसी से दिलचस्पी हो, तुम्हें किसी से मोहब्बत हो।
2: नाना की याद में आपने कुछ लिखा जो यहाँ पे?
1: लिखा कुछ नहीं, नाना की याद
2: में
1: दिल में है तो
2: बयां करिए।
1: तुमने एक मेरे मोबाइल में और तस्वीर डाल दी, हर वक्त कोई देख रहे थे आपको भी। मैंने भूलने वाली थोड़ी की देखो, याद कर।